आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तपतापे।

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत।

मत भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासों बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दे अवगुण को न चितार दे गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु

तुलसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो, पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। एक

हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन आसार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास आसार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना हो, मन बेदिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा।

प्रभु आपना नानक तिस कुर्बान, माग सुचे से कांडिये जिन पूरा गुर मेरवान। फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहावी सर्व

प्यार नाल सुनियो कि नहीं करता कोई रचना बांझी रखी जाए, पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है। आम जिन्हें सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होए तो कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा होंदा है जिदे नाल चीज़ का समुचा रस माणिया जाता है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणा जा वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज़ नाल बोलन, ते नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

अर्थ है, शेर ने अपनी खुराक ली बकरी नु फड़ लिया है। होया कि छीप जूती बकरी ते मर्दी होई हड़ हड़ हसी। क्यों? छी पुछे बिस्माद हो इत असुर कित रहस रहसी। छी कहिंदा है मैं चर्ज हां, तू मेरे फंदे विच है, मैं तेनू पकड़ लिया, तू मेरी खुराक है, मैं तेनू खा जाना ते अपनी आंदरां तृप्त करनियां हन ते अपना पेट पालना। पर मैं इस चर्ज इस गलों हाँ भी जदों मैं तेनू पकड़िया तेनू तेरे सामने मौत दिसदी है, तू फिर खिड़खिड़ा के हस रही है, क्यों? रीजन की है? छी पुछे विस्माद होए इत अवसर इस समय ते कित रहस रहस। तू किस खुशी दे अंदर हस रही है, तेनू हासा क्यों आ रहा है? जवाब है छीप जूती बकरी मर्दी होई हड़ हड़ हसी। छीप छे विस्माद हो इत अवसर कित रहस रहसी। बिनो करें दी बकरी बिनों करें दी बकरी उतर असादे कीचन खसी। अकत धूड़ा खाद्या अकत धूड़ा खाद्या को खल उखल विनसी। खादा की अकत धूड़ा, सजा की मेरी खल पुठी करके ला के शरीर तो जुदा कर दी। मैं हसदी यो हां भी सिर्फ महज अकते धूड़ा खाण दा सदका मेरी औलाद निकम्मी हो गई ते मेरी पुठी खल लै गई है सिर्फ अकत धूड़ा खाण करके। फिर सुनो।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख। समें दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने शीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी शोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। एक शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ।

हिंदुस्तान का महान तीर्थ मनिया गया। गंगा के किनारे ते बह के ऋषियां मुनिया तपिया ने तप किया, अपने जीवन नू सुचज्जा बनाया। गंगा हिंदुस्तान का महान तीर्थ है। हिंदू लोग गंगा का पानी बड़ा पवित्र समझ के अपने घर रखते। गंगा मैया भी किया जाता है। तो गंगा दे लागे एक सलता नदी है, वो अगे जाके गंगा विच मिक्स हो गई। तो कबीर जी ने उदाहरण दिती, कहिंदे ने मैं कल्ला थोड़ा विगड़िया, गंगा दे नाल लग के सलता भी विगड़ गई। ऐसी विगड़ी गंगा ही बन गई।

सही महीने च बौरा कौन है, दीवाना कौन है? तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंदा।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तुआने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हाँ, करो। आठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहे। ठेकेदार ने बुला के आख्या ए फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवा। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए, कहन लगे अज ते लंगर छकन दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है, ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। गुरु की सात संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दे। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

रखियो ग्रे पीतर उठ उहाँ को दौड़ो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जाने हो।

0: सब स्तुकनु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोठ महल्ला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

नाल जोड़ के वाहेगुरु शब्द का उचारण करदा है उसनु एडा वड्डा फल प्राप्त है कि जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहे हो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इसका महात्म इत्थे ही बस नहीं अगलियां तुकां विच

कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, हुन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इदा वड़ा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी

समझ लेना ढिला है, कोई तकलीफ है शरीर दे अंदर, जो आलस कर रहे है। पुराने बुजुर्ग कहते होंगे सन, आलस जेहा रोग ना जापे जग विच होर, अवगण सिखे आलसी बन अपना ही चोर। जेड़ा बंदा उठ के काम करन नू उत्साह नहीं ना रखता, समझ लेना उहदे शरीर च कोई कसर है। शरीर नू कोई दुख होवेगा, अंदर पल रहा होवेगा रोग, जेड़ा सामने नहीं आया, डायग्नोज नहीं होया, लेकिन अंदर कोई गल है जेड़ी उठन नहीं पी देंदी, जेड़ी उत्साह दे राह च रुकावट बनी हुई। इसे तरह मन की भी अवस्था है, मन जे बाणी वाल ना लगता हो, भगती वाल ना लगता हो, समझ लेना इनू कोई रोग है या काम है या क्रोध है, कोई ना कोई रोग डाढ़ा लगा है जिहड़ा चंगे पासे नहीं लगता। बुरे पासे दियां गल्लां करन वाला मन रोगी है, चंगे पासे दी गल सोचन वाला मन अरोग है। परोपकार ते सेवा दी गल अरोग मन सोचेगा, लोभ दी गल मोह दी गल विकारी मन सोचेगा, रोगी मन ते आलसी मन सोचेगा। और तुसी वेखो, बंदा किसे काम विच लगा होवे ना, जेड़ा काम उनू पाउंदा ना, उहदे कोलों जबरदस्ती कराया जा रहा होवे या उनू जबरदस्ती करना पै रहा होवे, चाहे व्यापार होवे चाहे वह वगार हो, किसी अफसर दे अधीन कोई काम करना पै रहा है या किसी भाईचारे दे असूलों नू सामने रखदिया मर्यादा नू सामने रखदिया बंधन बन के कोई काम करना पै रहा। वैसे महाराज ने इस संबंध ऐसा भी किया, बंदा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार। जेड़ा बंदा काम नू बहुत दुखी होके करता है ना, शौक नाल खुशी नाल नहीं करता, उहदा कोई लाभ नहीं होंदा, बोझ बन जाता है। इहो जिहा काम करके बंदा थक जाता है, इहो जिहा काम बंदे नू कहीए ना 2 किलोमीटर ते जाके आ जा, इन्ने च थक जाएगा, क्योंकि एक एक कदम मन मन का बोझल हो जाएगा, काम ते चित नहीं ना करता, अनमने मन नाल काम कीता होया थकावट पैदा करे। ते जे ओही बंदे नू कहो आओ सैर कर आईए, वह 10-15 किलोमीटर तुर फिर के आ जांदा है राजी बाजी, बड़ा खुश चढ़दियां कलां वे, उन्हें क्यों नहीं थकाया, क्योंकि वह चा नाल कीता होया काम। इसे तरह ही जदों बंदा भगती वाले पासे लगता है ना, लगे चित प्रसन्न चित नाल, मन नू मना के लगे, जदों इधर लगता है तो प्रसन्नता वधदी, खेड़ा वधदा है। लेकिन दूजे पासे काम क्रोध लोभ मोह हंकार वाले पासे या होर चिंता ते फुरनिया वाले पासे मन थक जांदा, हंब जांदा, रोगी हो जांदा। जदों मन इस पासे ना लगता होवे, इस मन के रोग नूं पछाणन की कोशिश करनी। धन गुरु नानक दे बारे च बाप चिंतित हो गया सी, ये भजदा नठदा नहीं खेड़दा नहीं, क्योंकि जद भी कोई बच्चा या सियाणा उठ के तुरदा फिरदा नहीं, उहदे बारे फिकर लग जांदा, इहनूं कोई तकलीफ है, इहदे रोग है कोई, इस नूं ते उहदी आपां बाहर जाके डाक्टर दे हथ फड़ा दिंदे आ, वेखो महाराज इहनूं की तकलीफ है, इहदे जीवन विच जीण दा उत्साह क्यों नहीं। इसे तरह जदों मन च परोपकार की सेवा की गल ना आउंदी होवे, मन दे संबंध च फौरन गुरु कोल आके पुछो, पातशाह वेखो इहनूं की तकलीफ है, इह भगती की सेवा की नितनेम की गल सोचण लग्गिया घबरांदा क्यों, ये रोगी हो गया मन। इत्थे साहब कहंदे ने मैनू ऐसा उद्यम तेरे दर तो बख्शिश होया, साहब पंचम पातशाह दा शब्द बिलावल राग दा, कहंदे ने मालिक तेरे दर तो मैनू ऐसा उद्यम बख्शिश होया है, जिस उद्यम दे सदका विचार पूर्ण हो गई, उपकार दी गल सोचदी, सेवा दी गल सोचदी, सिमरन दी गल करदिया करदिया तेरा नाम जपदिया जपदिया विचार संपूर्ण मुकम्मल हो गई, जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार। पहली तुक है उद्यम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, तेरा बख्शिया उद्यम धारण करके जीवन आनंद नाल खेड़े नाल भर गया। ये सच करके जानना अमृत वेले जागण वाला बंदा जिहड़ा है उहनूं असीं उद्यमी कहिंदे, ते जिहड़ा आराम नाल 8 बजे तक प्यार रहे समझदा उह वी असीं वी कह दिंदे आ ये आलसी। इन्हां दोहां दे जीवन च की है, जिहड़ा बंदा देर नाल उठदा उह समझदा अपनी मर्जी नाल उठिआ, लेकिन उह खेड़ा नहीं लै सकदा, आनंद नहीं लै सकदा, सारा दिन उह सुस्ती दे अधीन रहेगा। जिहड़ा बंदा अमृत वेले जागदा है, इशनान करदा है, बाणी पढ़दा है, शरीर ते मन नूं थोड़ा जिहा खोल लैंदा है ना,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਆਲਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਾਂ। ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਮਰਤ ਸੁੱਖ ਸਾਰ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰ

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी ते

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल

गुरु पातशाह इतो हुण पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर ब्यासा वाल तुर पए, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं। बाबा अमरदास जी आ सेवा दे पुंज सिर ते गागर चुकी ते दुरदे हुए आ रहे हैं। रस्ते विच जुलायां दी

चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना आ फल लगता है टैणी नू ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सत्संग।

पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या बुरी।

0: मशक्कत का नाइक से मुझले खेती छुट्टी ना
1: दिली नाम दे आया
0: गए मशक्कत का।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी। मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा। औगणे आरा मनुख पशु है। गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है। औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा, अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा। अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने, दी हस्ती नूं कटदे ने, ते सतगुरु औगणा नूं कटदे। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए, ते औगण कटे जांदे, औगण कटे जांदे ने गुण निसरदे। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, औगण मर जांदे, नकारा मनुख मर जांदा। एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लै के मनुख उपर नूं उठदा, गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश की है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है, तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में, कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्हें योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शी है। साहब कहिंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हो सदा घुमाया, मैं वारने जावा सतगुरु तो, तिस गुर को हो खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा, बलिहारने जावा उस तो। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हो वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते, जिन अवगुण कट गुणी समझाया। सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु सांडे। साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शिया है, अपना प्यार बख्शिया है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ। ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

0: जल बिन कुंभ ना हो, ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था, मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी ओवे जल लभ रहे हैं, तुहाडे कोल तो हजारे यात्री आते जाते, शायद तुहानू तो कुछ पता होए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने, इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त, ते बेरी ते कां बैठदे ने।
2: छपड़िया ते कई ने, ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी, आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने, ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी,
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे, कागू हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो, सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास?
2: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे, जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है, उत्थे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी, असि चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज, सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई नानिए, सो सिर कपल उतार, जो सिर साई नानिए, सो सिर की देताए, उन्हें बैठ जलाए, बालन संदे थाए, बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी, की गल है पहला, तुसी नहीं गया रिता?
4: असी किस तरह जानते, सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है, पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए भैने, मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडी लोड़ा?
5: मेरिया लोड़ा? मेरिया लोड़ा तो खुदावंद पूरिया करता है, तो हो भी चाहिए नहीं की जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं, जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना, दिन वेले बेड़ी चढ़ाना, तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थे दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पल्ले नहीं।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जरा सब अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है, और दर से जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया, उस औगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।